0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Jelly Bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: बुडुह कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिदा हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्रमा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सकको वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइट ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजुइना कान कम सुन्ना कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ति रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईट वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के ला कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध भे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसिन मशीन भे वहाँ मिलात
1: ए ओसिड हो कलसे बुडू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9884206997 9558236697 वो 9804 83697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
1: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार परसुती व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सबको डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081536465 9829408665 वो 9842808465

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: पिर

0: Böyle panya. Extreme energy drink.
1: Wow! Plus two परीक्षा पनि पास भयो। अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
2: ल है बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC छ नि।
1: ए हो र? त्यहाँ के के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
2: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित AC कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
1: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
3: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
1: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 5 80 36 5 77, 98 5 80 28 195 र 98 5 80 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC सफल भविष्यको बलियो आधार।
4: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। यतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
5: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है।
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज 6 फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98 4 80 20 697, 98 5 80 23 697 और 98 0 14 83 697।
6: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
5: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
5: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
4: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: सखी
1: कितना बढ़िया है,
0: कहाँ बरबराती हूँ।
1: हाँ हाँ सखी, हाँ
0: कहाँ मोबाइल में देख के बरबराती हूँ।
1: बरबराई
0: अच्छा अच्छा राखी
1: मतलब और
0: अच्छा बंद। हाँ हाँ तो सुने तभी तो कहे, अब मोबाइल माँ देखे हो मार गौर से और बर्बाद राखी आए वाला
1: है।
0: हाँ
1: मोबाइल माँ गौर से
0: अभी
1: ना
0: तो बहुत ज्यादा दिन है राखी ना।
1: हाँ है तो अच्छा, लेकिन तैयारी करा जाता है और बढ़िया बढ़िया मतलब राखी जैसे देखा जाए जब बड़ा शौक साल भर के बाद आवत
0: हाँ, वो तो बात सही
1: और बढ़िया राखी मन में तो यही होत है ना कत्ता बढ़िया राखी रक्षाबंधन खरीदा जाए भाई भाई लोगन का तिर तो यही मारे मोबाइल में डिजाइन देखित रहा का।
0: अच्छा तो राखी के डिजाइन।
1: हाँ अब डिजाइन डिजाइन दर आजकल आवत है नी। वैसे तो अब ये कहा जाता है कि सूत कलावे सबसे महत्वपूर्ण चीज हो रक्षाबंधन के सकी इमा गलत नहीं, लेकिन का होते कि समय अनुसार आजकल तो इतने बड़े बड़े डिजाइन के जब आवे लागत हैं कोनो में शंकर भगवान बने रहते कोनो राखी में गणेश जी बने रहते
0: ओम बने रहते
1: है शुभ लाभ बना रहा था ऐसे ऐसे चीजन में जो डिजाइन देखो तो मन करत है जौन जत्ता बढ़िया हो वही खरीदो यही हम देख देख बतवाइत रहे बड़बड़ाइत नहीं रहे।
0: अच्छा मतलब यही जो है सोच बनावत रही कि कौन मेरे के खरीदा जाए है ना।
1: हाँ। अच्छा तो सखी और क्या हाल चाल है।
0: हाँ सखी हाल खबर तो बढ़िया है अपन बताओ।
1: हमारो ठीक है और हमारे श्रोता लोगन के भी हाल खबर ठीक हुई।
0: हाँ उम्मीद तो यही करा जाते
1: है ने। तो श्रोता हम लोग आए गए कार्यक्रम घर अंगना मा आप लोग के समझ 1 बजे से 3 बजे तक साथ है राजे आप लोग जाना भी जाते है कि ये घर अंगना मा वैसे आज हम बड़बड़ाए नहीं रहन गुस्साने भी नहीं रहन अब हम अपन राखी में सोच बना रहे दिमाग में मोबाइल में वो देखित रहा है लेकिन हमारे सखी कब शुरू होगी हम जान नहीं पाए
0: जान नहीं पाए
1: मारे कहा
0: और यू नहीं जान पाए हमारे सखी की प्रोग्राम के समय भी हो चुका है।
1: हाँ ये बात तो है गलती हाँ। हम समय नहीं देखे रहे हम सोचित रहे अभी हमारे सखी
0: तैयारी नहीं सखी कोई बात नहीं गलती के मां कोई बात ही नहीं है।
1: अब देखो ना मेरे कोनो गीत संगीत सुना तब हम का लगी हो ना
0: गीत अभी नहीं सुने हो का
1: सुना रहा है
0: लेकिन रिम जिम बरसता बाहर है पानी
1: बस वो तो हम समझिन गए ना बरसत है के मारे सुना।
0: अच्छा तो आप सोचते हो कि मतलब ये गीतन बजत है नहीं लेकिन खैर आप अपनी गलती ना स्वीकारा जाए का
1: ना हम स्वीकार कर लिया तो मतलब आप जबरदस्ती आज हमको स्वीकार न कर दे
0: अभी मारे ये मारे कही थे ना अब राखी भी देखो नेरे ना आई गवा
1: हाँ नेरे का बस 5-6 दिन है।
0: हाँ बस शुक्रवार के तो है
1: हाँ, तो
0: अब तैयारी तो पहले से करे पड़ते हाँ। और हर बहन लोगन के एक वो होते का कहते तैयारी के
1: उमंग होते उमंग होते और सखी के साथ ही एक बात और तो रहा थे कि जो हमारे लोगों के दीदी बहनी जो दूर रहा थी तो उनका मायके आवे के खुशी रहा थे कि मायके जाए राखी लेके जाए के है ने और जो हद से ज्यादा दूर रहते हैं देश विदेश भाई लोगन रहते हैं तो उनका फिर से पहले इनसे कुरियर के भेजे के कि हुराक द्वारा रजिस्ट्री कैसे भेजे के ऐसे बहुत से तैयारी करे के होते हैं तो राखी तो अभी से बाजार में मिले लगा
0: है हाँ।
1: देखी तो इस है तो अब से एक चीज बड़ा नीक लग सकी
0: का चीज
1: की नवा चीज हम देखा रहा कि जैसे पहले हम लोग कहूँ दुकान लगाए रहते है नी राखी बेचा करते रहे अब किरानो दुकान में आदमी रखे रहता बेचा करता लेकिन हम का देखे कि रिक्शा मा हाँ जैसे अब कपड़ा लत्ता भी देखे हैं कि गांव गांव में रिक्शा मा लाद के लटकाए के जात हैं ऐसे राखी भी हम देखे काल कि रिक्शा में पूरा बिछा है चारों तरफ राखी लटका है और रिक्शा चला भाई राखी बेचत जात हैं तो बड़ा नीक लाग का वो देख के हमरे याद आए।
0: हाँ, हाँ, अब का है ना सखी अब जहाँ पर इस चीज सुविधा ना रहा थे ना
1: हाँ।
0: रक्षाबंधन ना मिल पावते तो वहाँ तक जो है वही द्वारा ही पहुंच जाते बहन लोग खरीद लेती।
1: हाँ मतलब सुविधा अनुसार देखो हाँ। जहाँ जहाँ रास्ता बढ़िया है वहाँ वहाँ कई चीजें सुविधा अनुसार गांव में भी पहुंच जाते है तो भाई बहनी लोग आप लोगन अच्छे से राखी बांधा जाए और बढ़िया से छांट छांट के राखी लिया जाए कि आपके भाई लोगन का पसंद आ जाए। और वैसे तो हम पहले कहा है कि राखी के महत्व का हो कि हम लोग जो कलावा बांधा जाते सूत उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है तो आज हम लोग चर्चा की जाए रक्षाबंधन।
0: हाँ हमारे साथी लोग जान भी गए हुए हैं इसी बात में ये
1: पूर्णिमा कहा जाते हैं रक्षाबंधन कहा जाते हैं
0: सनिनो भी कहा जाते हैं इनके कई नाम है लेकिन जो है नाम तो ये मतलब अलग अलग है काम वही है एक ही।
1: हाँ तो आज वही के चर्चा की सकी हाँ, और श्रोता आप लोग भी बैठ के जरूर सुना जाए और आप लोगन का प्रोग्राम कस लगे क्योंकि प्रतिक्रिया भी दिया जाए और कुछ जो हमारे लोगन के ये वीडियो जो बनावा जाते है एक हम लोग अपने कृष्ण सार FM के पेज से फेसबुक से एक पोस्ट करा जाते है उसके बाद हम लोगों के जो अपन व्यक्तिगत ID रहा है तो भाई हम लोग हाँ नए श्रोता हुए तो आप हमारे लोगों के परिचय भी तो सुन लिया जाए कि जैसे हमार सखी चंदा
0: और हमार सखी संध्या।
1: तो आप लोगों का कार्यक्रम में स्वागत के साथ है, नमस्कार
0: नमस्कार है।
1: तो कार्यक्रम सुनते रहा जाए 3 बजे तक। और हम लोग आप लोग हमारे सखी से विनती पहले कर ली भाई, पहले सलाह कर ली रुका जाए सखी।
0: हाँ,
1: कुछ गीत संगीत सुनाए खांसी आवे लग है।
0: नहीं अब मतलब ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले।
1: इंतजार करे कि कोई बात नहीं श्रोता, आप लोग 3 बजे साथे राजे इंतजार करते गीत संगीत सुनते और हमारे लोग
0: इंतजार के फल मीठे होते हैं।
1: रक्षा बंधन के स्पेशल सुनते रहा
0: सुनते जाए। रहा जाए
1: तो चला जाए फिर।
0: बिल्कुल
2: कौशल्या मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा 1 महीने फ्री ओपीडी सेवा शुरू भएको छ। कोहलपुर 9 हवलदारपुर स्थित कौशल्या मेमोरियल हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बिहान 9 बजे देखि बेलुका 4 बजे सम्म 1 महीना सम्म फ्री ओपीडी सेवा संचालन भएको छ।
3: प्रदान गरिने सेवाहरू
2: गर्भवती जाँच सेवा, महिला को तल्लो पेट दुख्ने समस्या, पाठेघरमा मासु पलाएको समस्या, यौनी चिलाउने समस्या, गन्नाउने सेतो पानी बग्ने समस्या, एप्टोपिक प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी समस्या, निसन्तानपन सम्बन्धी समस्या, महिनावारीमा गडबडी, पाठेघरमा हुने क्यान्सर जाँच तथा सम्पूर्ण स्त्री तथा प्रसूति सम्बन्धी समस्याको चेक जाँच तथा उपचार गरिन्छ। यही श्रावण 15 गतेदेखि भाद्र 15 गतेसम्म फ्री ओपिडी सेवा सञ्चालन हुने भएकाले सबैमा जानकारी गराउँदै सेवा लिनका लागि अनुरोध छ। सम्पर्क कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल कोहलपुर 9 हवलदारपुर बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 081-41-40-07 र 98-482-63-399।
4: बीर डेंटल
5: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
6: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचार दाँत सफा करने, दाँत भरने, दाँत निकालने, दुखेको दाँत को जरा को उपचार, खाली ठाउँ में दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
5: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
6: फोन नम्बर 081-532-375।

0: अंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्ते।

0: हाँ सखी, गीत तो बड़ा अच्छा रहा है नहीं?
1: हाँ गीत भाई बहन रक्षाबंधन के, रक्षाबंधन के जो महातव
0: रक्षाबंधन का सबसे बड़ा त्योहार,
1: यही गीत सुनने को मिली कुछ दिन तक के बाहर रहा था और साल भर के त्योहार रहा था, साल भरे पर आवत है
0: भाई बहन के त्योहार रहा था, पवित्र त्योहार।
1: और जैसे कहा जाने जैसे हिंदू धर्म में ये रक्षाबंधन के त्यौहार भाई बहन के पवित्र त्यौहार माना जाता है। ये भाई बहन के एक दूसरे के स्नेह प्रेम और साथ ही उनके रक्षा करे खातिर, है नी, भाई बहन अपने भाई के रक्षा करे खातिर रक्षा सूत्र बांधा थी कि मेरे भाई का कभी दुख न होए, हमेशा हम ये सूत्र सूत हमारे भाई के रक्षा करे। और भाई बहन का जो रिश्ता है कि ये रिश्ता से ऐसा प्रेम के डोर बांधा थे कि बहन के हमेशा दुख सुख में हमेशा होके साथ दे रहा
0: था।
1: तो यही अरे ये एक त्यौहार है जो कि हम लोगों के ग्रंथ अनुसार चली आई है नी, हमेशा ही का ये नक्षत्र पर ये तिथि पर साहित्य देख के ही का हम लोग बांधा जात है। ऐसे और भी भाई बहन के त्यौहार है जैसे भैया द्वीज कहा जाता है, भैया द्वीज में भी के भाई बहन के महत्व है। लेकिन ये रक्षाबंधन में कहा है कि कलावा सूत के तो बात हम लोग करा जाते हैं, कलावा सूत अनुसार जब बढ़िया बढ़िया जब रक्षा मिलत हुए तो कहे ना हम लोग छाटे जावा जाए, डिजाइन देखा जाए, है नी, बहुत जना सोना चांदी।
0: अब आधुनिक आधुनिक युग में यहाँ तो फिर अब एक सी एक बढ़िया बढ़िया रक्षाबंधन मिलत
1: है, चाहे जौन कहा जाए लेकिन उमा सूत जरूर लाग रहा था,
0: सूत तो लगा रहा था, उमा सूत लगा रहा था।
1: और बाजार में भी देखा जाए कि चारों तरफ इतना भीड़ रही कि चले जगह नहीं रहा थे, और गावन में भी छोड़ छोड़ हर दुकान में राखी टंगी रहा थी, है ना, हर जगह मिला थे।
0: हर जगह
1: तो भी शौक कहते कहते हमरे लोग के अंदर भी ये उमड़ जाते है, देखा पर जाते है नी कि कत्ता पहले से शौक रहा थे। तो सारे भाई लोगन से कहे चाहा जाते कि आप लोग सही समय में और सही मुहूर्त में कहूँ न जावा जाए और अपने बहन के इंतजार करा जाए और राखी जरूर प्यार से बंधावा जाए,
0: प्यार से बनावा जी, और बहन के यहाँ रक्षा करे के वचन भी दिया जी है। और बहन लोग भी अपने भाई के जो भाई के कलाई में राखी बांध के उनके उम्र उनके जो है उन्नति प्रगति के कामना करा जाए, है ना, मनोकामना पूर्ण होए, भाई के हर काम में वृद्धि होए, मतलब आशीर्वाद दिया जाए, बहुत ढेर सारी आशीर्वाद दिया जाए, है ना सखी।
1: हाँ नहीं मतलब आपका देखित रहा है कि मतलब जो हाव भाव होत नहीं है
0: जैसे... तो अब हाव भाव देखो हमरे, अब हम आप जिसे कुछ बात बोला था तो हम भी ध्यान से सुने थे तो, लेकिन आपके ध्यान कुछ और तरीके से रहा है,
1: कुछ और तरीके हाँ। से ऐसा तो कोई
0: मतलब का हाव भाव देखत रहे हो
1: आप, पहले ने हम कह दिया रहा कि हम लोग के बोलत बोलत जो अंदर से भावना है वो दिखाई पड़ जाता
0: तो बनावटी
1: चीज आपों का देखित रहा है
0: कि तो बनावटी कहूं थोड़ी ना बोला जाता
1: है, आरोप थोड़े हम लगाए हैं, हम कहे ना भावना देखी थे ना
0: हाँ,
1: कि हम लोगों का
0: देखा
1: तो विशेष रक्षा बंधन के बातचीत अच्छा। करा जाता तो अब सोचा जाते कि कब जल्दी आए जाए रक्षा बंधन, ये चीज की
0: सोचा तो आप उधर रहे हो रक्षा बंधन के तरफ और देखत हमरे तरफ
1: देखे अपने सखी का जब एक हफ्ता मिला जाता है आप ही कहा थी तो देखें तो
0: जरूर बात है सही बात है
1: ना, देखबे और का,
0: अरे देखो ना का है ना देखियो
1: नहीं अपना देख अब आपका तो देखा तो दूसरे तरीके से, अब दूसरे तरीके से कौन
0: अब आप कोई भी बात अगर निकला था तो दिल से निकला था ना
1: हाँ
0: हाँ तो दिल से तो निकाली थे, दिल के बाद जुबान पर आए जाते हैं
1: तो मतलब आपका आरोप भी तो न लगा रहे ना पहले
0: अब आरोप के नाम कह लियो हम कुछ कहा है थोड़ी
1: ठीक है तो यही बात पर कुछ सुनाई दिया जाए फिर
0: सुनाई दी
1: हाँ अब सखी आप लोग भी सुनते रहा जब मैं सखी अब कुछ बोले जाए तो का ध्यान से सुना जाए
0: ठीक है सखी सुनाई में लेकिन अभी थोड़ा व्यापारी विश्राम की तरफ जाए के
1: हाँ, तो ठीक है चला
0: समय हो चुका है
1: चलो।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: सखी
1: हाँ सखी,
0: अब रक्षाबंधन आवे लाग है और सावन अब खत्म होए लाग
1: हाँ,
0: है ने,
1: अब सावन के संकेत पुनवास हाँ सावन के पुनवासी के ही दिन जो है रक्षाबंधन पड़त है
0: हाँ,
1: तब अब के भोरे भादो लग जी
0: बस
1: हाँ बस
0: अब सावन खत्म है,
1: खत्म है लास्ट
0: तो
1: है रहा, लास्ट
0: खत्म है तो सावन के खत्म अब सावन महीना भर
1: हाँ।
0: तो अत्ता हम लोग मतलब धूमधाम से सावन मनावागा, अपने मेहमानों का भी बुलावागा, सावन महीना के कई बातन की चर्चा भी की
1: हाँ, और भोलेनाथ के व्रत भी रहागा
0: हाँ, सावन सोमवार के सारी हमारे सखी लोग उपवास रखागा, तो ये महीना सुख में बीता हुए जरूर, और आप लोग ऐसे सुख में हमेशा हर महीना आवे वाला महीना सुख में बीते, अच्छे से आप लोग के घर परिवार में खुशहाली छाए, और यही के साथे अब हम लोग खुशहाली के साथे हर त्योहारन का काहे ना हम लोग उका धूमधाम से मनावा जाए, अपने जो कला है संस्कृति है उके अनुसार मनावे तो हमारे लोगन के तो कर्तव्य भी है, काहे से जैसे कला संस्कृति अपने अनुसार जो हम लोग के धर्म अनुसार मनावा जाते है वो धर्म अनुसार अगर मनावा जाए तो हमारे लोग के आवे वाले पुस्ता जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आजकल कृत्रिम तरफ भागत हैं, जैसे मोबाइल इनके तरफ देखा था, मोबाइल में जो जो चीज़ उनका बतावा जाते वो अनुसार वो आकर्षण होते हैं, लेकिन हम लोग के जो अपन ग्रंथ में जो अपने हिंदू धर्म में ग्रंथ है जो संस्कृति है वो चीज़ का धीरे धीरे लोप न हुए दिया जाए, कैसे जते लोप हुए दिए जी तत्ते आए वाले पुस्ता होगा जाने से वंचित हो जाएंगे,
1: वंचित हो जाइए। तो सखी अब देखो ना हम लोग अब 2 बजे के टाइम चेक के तरफ जावा जाए, क्या है कि टाइम चेक के टाइम भी हो चुका है,
0: ठीक है टाइम चेक के तरफ जावा जाए, टाइम चेक के बाद आप लोग कार्यक्रम सुनते रह जाए, हम लोग आप लोग के साथ महान 3 बजे तक
1: बिल्कुल।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे का है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
3: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उसके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
3: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: sip on ya. Extreme energy drink.
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
2: सुनो, वहाँ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यूँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुल निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कहके तहे दिल हुआ जाए।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
4: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
5: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
6: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारंटी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
5: स्थान राजा चौक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाड़ी।
6: संपर्क 97051148 70।
5: सोफा हब नेपालगंज,
6: विश्वास में नंबर एक,
5: क्वालिटी में सब भन्दा बेस्ट।
7: एनसेल पैक किन्नु भयो त सर्तहरु लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: रक्षाबंधन धागा है ना सखी, एक दो पवित्र जो है प्यार उमा बंधा हुआ रहा थे। गाना भी मतलब कुछ ऐसा रहा है। हाँ, गाना के बात करें हैं इनका।
1: हाँ तो और गाना हम लोग पहले से बतवावा जाते हैं ना सखी। हाँ, कि जो हम लोगों के कलावा कच्चा सूत के जो धागा रहा थे यही सबसे बड़ा महत्व
0: रहा था।
1: और सखी ध्यान दिया गया है, आजकल के हम लोग तो राखी खरीदा जाते, राखी बांध दिया जाते नहीं, लेकिन हम ध्यान दिया है कि जो हम लोग के पुरखा हैं, जैसे हम लोग के महतारी हैं या दाई लोग हैं या दादी लोग जो हैं, ध्यान दिया जाए कि उन लोग अगर डिजाइनदार राखी बांधत तो हैं, लेकिन कलावा अलग से हाथ में भाई के बांधत है। हाँ, हमू ध्यान दिया है तो हमू पूछा रहा है कि कलावा राखी तो बनते हो तो कलावा काहे बांधत है, तो कहीं कलावा विशेष कही के रक्षाबंधन के कलावे होते हैं। और के बाद तो हम लोग अपने फैंसी जो डिजाइन के रक्षाबंधन कोई भी बांध सका जाते हैं। तो यही मारे कि कलावा के जो सूत के है उके महत्व रक्षाबंधन में सबसे बड़ा चीज है।
0: हाँ, और सके जैसे कि हम ये भी देखा है कि जो ये सूत होते हैं नहीं, रक्षा के सूत जो होते हैं, उसका जिसे भाई का ही नहीं, जिसे भौजाई का भी बांधा जाते हैं ना।
1: हाँ,
0: और भतीजा का भी बांधा
1: के भाई के आधा कर्तव्य भौजाई भी तो निभाती है।
0: तो मतलब वही के जैसे जो रक्षा करत है तो ये रक्षा के हिसाब से, रक्षा के रूप में यहाँ का बांधा जाते हैं। और जो रक्षाबंधन है तो ये रक्षाबंधन रक्षा आपके का विचार से अलग अलग है कि एक ही है?
1: नहीं, जैसे हम लोग आशीर्वाद दिया जाते हैं भाई के रक्षा हो तो भाई के साथे साथे भौजाई के जोड़ी तो बंध जाते हैं।
0: हाँ,
1: शादी ब्याह हो जाते हैं उनके अपन घर परिवार, तो उनके घर परिवार भौजाई के साथे जो बाल बच्चे हम लोग के भतीज भतनी सबके परिवार खातिर सूत के रक्षा के की सुरक्षा खातिर परिवार के रक्षा, परिवार में हम लोग पूरे बन जावा जाते हैं। वो परिवार का सुख में बीते और सुख से रहते।

0: भी तो हम लोग मई के में आए पावा जी, हम लोग सुख से टहार पावा जी। इके भाई मतलब इके उद्देश्य का है, भाई के साथ है, अगर भाई का जो आशीर्वाद दिया गया भौजाई का तो वो मिलते हैं,
1: मिलते हैं।
0: तो यही मारे जोड़ा का भाई का जब बांधा जाते है तो भौजाई का भी साथे बैठा के कलावा भौजाई के हाथ कलाई में भी बांधा जाता है। और सखी जैसे धार्मिक नजरिया से जब हम लोग देखा जाता है तो हर एक वर्ष मई का जैसे सावन के आप लोग अब भी कह रहे हो तो सावन के मास में जो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि आवत है तभी का हम लोग तिथि का विशेष महत्व दिया जाता है,
1: विशेष महत्व दिया जाता
0: है। जी माँ बहन अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधा थी और हिंदू धर्म अनुसार का होता है रक्षा सूत्र का बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है, जिसके कारण से भाई और भौजाई का हम लोग बांध के उनका पवित्र की हमेशा इनके रक्षा हुए। अगर उदय जना ठीक रही हैं तो परिवार वैसे भी अच्छा रही। और उनके साथ है धार्मिक मान्यता अनुसार रक्षाबंधन के दिन विधि विधान से जैसे साथ जो हम लोग कलाई में रक्षा सूत्र बांधा जाता है ये का होते कि घर परिवार भाई के नकारात्मक जो ऊर्जा होते है वो दूर हो जाए, वो अच्छे से रहें, उनके जीवन में सुख शांति आवे और समृद्धि आवे ये कामना करत बहन रक्षा सूत्र बांधा थी। और रक्षा बंधन के जो पर्व है ये हम लोगों के भगवान श्री कृष्ण से जुटा है। का भवा रहा है कि श्री कृष्ण और द्रौपदी जी से ये कहानी जुटा है। धार्मिक मान्यता अनुसार जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के उंगली में जब खून निकल रहा है उनके खून बहत रहा है तो द्रौपदी का करना अपने साड़ी जो धोती है उनके आंचल चीर के उनका बांधिनना
1: है,
0: जिसके कारण से साड़ी के जो टुकड़ा उनका चीर के बांधिनना है, जिसे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी भाई बहन के नाता में बंध के रहे। और वही वचन से आज तक हम लोग ये रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ता खातिर मनावा जाते।
1: हाँ वैसे तो मतलब देखा जाए कि कोई भी कहानी कथा होते उनके पीछे यही महत्व होते हैं।
0: हाँ, कोई ना कोई पौराणिक कहानी पौराणिक
1: जुटा रहा थे। तो सखी जैसे ये रक्षाबंधन त्योहार जो है मतलब हिंदू के ही न कह के ये सब धर्म मैया मानत है।
0: हाँ ये बात तो आप सही कहा गया है सखी। हाँ। कि इमा धर्म नहीं बंधा है। हाँ। बस इका कहा है कि ये धर्म माँ इका प्राचीन काल से मनावा जाते, लेकिन हम लोग देखा भी गा है आपके भी तो हुई सोच कुछ आप भी जानकारी पावा का होई हम लोग देखा जाते कि इमा जाति के फर्क नहीं है, जात जाति में नहीं बटा है, ई पवित्र रिश्ता हम लोग हर जाति में इमा एक ही रिश्ता है भाई बहन,
1: भाई बहन के इमा जात पात धर्म ऊंच नीच के कोई भेदभाव नहीं रहते, इमा खाली रहते भाई बहन के पवित्र त्योहार। हाँ। तो ये भाई बहन के जो ये त्योहार है ना सखी। हाँ। अब जैसे कोई के बहन नहीं है।
0: हाँ,
1: है ना।
0: हाँ।
1: कोई के भाई मतलब कोई के बहन नहीं है तो कोई के जो जिसे कोई के भाई नहीं है तो उनके दिल पे यहाँ जो मतलब बहुत तकलीफ तो पहुँचा थे लेकिन हाँ। धर्म भाई भी लोग मानने रहा थे तो धर्म भाई भी मानत हैं तो उनके जरिए से भी उनके एक भाई के प्यार पूर्ण हो जाते हैं, है ना, भाई के बहन के प्यार पूर्ण हो जाते। और कोई के जो है मतलब मतलब कलाई सुना रहते भाई ना होए को जैसे और बहन भी भाई ना रहते तो उनके दिल पे यहाँ बहुत दुख लगत है ना सखी।
0: हाँ, जब सब लोग मनावे ला हाँ। सकी तो क्या होता है जब जी के जैसे कोई के भाई नहीं रहते कोई के बहन नहीं रहते तो ऐसा सोच आवे लागत है कैसे हर गली मोहल्ला हर घर घर हाँ। में जब ये त्योहार मने लाते सबके कलाई में राखी बंधा रहा थे सूत बंधा रहा थे ऐसे में जब अपन कोई नहीं रहते तो लागत है कोई हमारे एक बहन होत
1: हाँ।
0: तो राखी
1: बांधे
0: सोचत है कि हमारे अगर भाई होत तो हम राखी बांधी।
1: ऐसे
0: चीजन में हम लोग का करा जाते कि से अपन मन मिला
1: मन
0: जी हमारे लोगों का सुरक्षा करत है जी का हम लोगों का बहन तना मानत है उनका हम लोग ई त्योहारन पर अपन भाई कह के एक पूजनीय पद दे के हम लोग उनके कलाई में उनके रक्षा सूत्र कह के राखी बांधा जाते
1: हैं।
0: जात पात नहीं देखा
1: जाते देखा नहीं जाते
0: मन मिला जैसे कहा नहीं जाते खून के रिश्ता नहीं है लेकिन ये पवित्र रिश्ता जैसे कहा नहीं गया द्रौपदी और श्री कृष्ण जी के खून के रिश्ता नहीं रहा फिर भी उन लोग भाई बहन के रिश्ता ऐसे बांधा जाता है जिसका हम लोग अपने जन्म जन्मांतर तक उनका भाई माना जाता है और बहन के रक्षा करके उनका बहन मानत है। और जैसे भी एक मैसेज और देख चाहा जाते सखी कि का कोई भी चीज है ये रिश्ता का निभा करते दिखावटी ना करा जाए,
1: दिखावटी ना करा जाए, दिल से करा जाए।
0: हाँ, आप बैठे हो आपका हम बांध दिया या आपका हम फिर बैठे रहो बांध दिया उ हिसाब से अगर आपका दिल से माना का है तो बंधवावा जाए। अगर हम दिल से भाई माने हैं तो राखी बांधी लेकिन देखावटी ना करा जाए कि हाँ बांधे तो का हुई गोवा लेकिन ये सूत ऐसा चीज होता है कि एक बार अगर आप लोग बांधागा या हम बहन बांधी तो का हमेशा जिंदगी भर तक
1: निभाव जाए। कोई भी मुसीबत संकट हो तो बहन के हर दुख में साथ दिया जाए। हर बहन लोग भाई से यही वचन मांग थी। उनका कोई ऐसा कोई चीज के मांग नहीं रहा थे, बस भाई के उनके रक्षा के उम्मीद रहा थे। और ऐसे ही बहन से भाई लोगन का यही उम्मीद रहा था सखी कि उनके आशीर्वाद, बहन लोगन के आशीर्वाद हम लोगन पे यहाँ बना रहे और हमेशा हर साल ये हाथ माँ कलाई माँ उनके नाम के रक्षा बना रहा है, हाथ सुना ना रहे।
0: हाँ तो सखी हम लोग ऐसे भावना मना बहा जाए और बातचीत तो करते
1: तो
0: रहा जाए,
1: है
0: सुना तो, फिर कुछ हाँ, गीत संगीत जिसे कहा होते कि गीत संगीत सुने से भी मन के कहा होते हौसला और भी रंगीन हो जाते हैं और खुशहाली तो अभी आवेग बाकी है।
1: बिल्कुल, तो सखी अभी व्यापारिक विश्राम के तरफ चला जाते।
0: हाँ, ठीक है चला जाए।
2: अब सुनोस श्री स्टील्स रेडियो कथा तेसरो तथा अंतिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्। तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री एफई 550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन। अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
4: ल है बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
4: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित AC कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
3: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
5: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC मा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
3: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10-2 औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98-5836-577, 98-5838-195 र 98-5836-811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC सफल भविष्यको बलियो आधार। आज म एकदम खुसी छु।
5: हैन, आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त?
3: आज मैले रेडियो कृष्ण शर्मा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने, मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो, म त भुल्ली नै बाबालाई भनेर जान्छु।
5: ए हो र, ल ल भन न त, तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ, हामी पनि जानु।
3: ल सुन, त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित GM कलेजको BBS प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ। अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू, पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, एजुकेसनल टुर, CA काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन, मोटिभेसनल क्लास, ICT क्लास, AC क्लासरुम, इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट, क्रिकेट मैदान, बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप, क्यारियर काउन्सिलिङ, जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन्। यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यही जाने निर्णय गरे। अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो?
5: हो रहेछ, एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त। अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज GM कलेज नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु।
3: ल सुन, त्यसो भए 98-5-80-40-388, 98-045-086-26 र 98-5-80-85-040 आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है।
5: ल ल हुन्छ हुन्छ ल।
6: नमस्ते दाई।
7: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिन पछि देख्यौ त भाइ।
6: विदेश जान आटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
7: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
8: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
9: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीको साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
10: हाम्रा विशेषताहरू:
9: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
10: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपीडी सेवा।
9: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
10: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
9: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबीएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
10: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
9: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
10: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40% देखि 50% सम्म विशेष छुट सेवा।
9: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआईसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
10: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।
11: ओहो सर, कार्यक्रमको सबै तयारी त भयो तर कहाँ गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेन, के गर्ने होला?
12: किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, न्यु कैलाश दर्शन होटल छँदैछ नि।
11: कस्तो होटेल हो कुन्नी? हामीले खोजेको सुविधाहरू छ कि छैन?
12: किन नहुनु, ल सुन्नुहोस्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका राजा गेटदेखि 500 मिटर पूर्व रहेको यस होटलमा त गाडी पार्किङको सुविधा भएको, एसी रुमको व्यवस्था भएको, क्याबिन सहितको रेस्टुरेन्ट भएको, कार्यक्रमका लागि हल अनि अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा खानेकुराको साथै बसोबास पनि व्यवस्था रहेको छ। एनिभर्सरी, बर्थडे तथा विशेष पार्टीको अवसरमा 15% विशेष छुटको पनि व्यवस्था छ।
11: यति सुविधा पाएपछि त अब हामी ढुक्क भएर न्यू कैलाश दर्शन होटलमै कार्यक्रम गर्नेछौँ।
12: हजुर, न्यू कैलाश दर्शन होटल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20, राजा। सम्पर्क फोन नम्बर 98-487-56-466।

0: Estonia.
1: Extreme energy drink.
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580303479 र 98481380।
4: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
5: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
5: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
4: अस है तो अम्मा कहिया आजे लेके जाई थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
5: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: सखी।
1: हाँ सखी।
0: तो आज जैसे हम लोग रक्षाबंधन के बात जो करा जाते है और साथ है आप जो ये संगीत सुनाओ थो ना, फिर कही तो आप कही हो लो लगा था कि रक्षाबंधन जल्दी आए जाए
1: दो, कहा कि अब जल्दी आवत है ना।
0: आवत तो है
1: हाँ।
0: मतलब हमारे
1: अब आज से साथ में तो रही गो है, साथे रोज तो रही गो है,
0: पांच दिन रह जाए सात दिन रह जाए। अब कहे का मतलब ये है कि हम लोग कहा जाते है कि अरे सूख के परी ठीक हाँ। तिथि कहा थे बिफे के परी। अभी जो नीमा समस्या आएगा ना भद्रा वाला,
1: हाँ सखी भद्रा काल, हर साले भद्रा।
0: साल भद्रा के समस्या जो उन पर जाते है तो सारा त्योहार के सब वो हो जाते है, खराबी हो जाते
1: टाइम के वो हो जाते का हाँ। कि कौन टाइम में बांधा जाए,
0: समस्या में पर जाते असमंजस मा की जैसे मान लो आज बांधी कि काल बांधी, ऐसे चीजें के है जो अभी हम लोग चर्चा करा जाए। फिर से कहा थे भद्रा लागे वाला है इमा और साइत इमा दिए है समय दिए है, कहा ना जाते साइस के वजह से कलावा सूत बांधा जाता है रक्षाबंधन बांधा जाता है। तो यही के चर्चा हम लोग करा जाए, लेकिन अब उससे पहले हम लोग रक्षाबंधन के गीत संगीत सुनते हैं ना। हमरे सखी के कोनो समस्या है कि कोनो बात बतावा जाए, गीत संगीत सुनावा जाए
1: अभी सखी।
0: अभी तो पूछे है ना, आप परेशान ना हो,
1: परेशानी हो, परेशानी वाली कौन बात है सखी। अब व्यापारिक विश्राम के समय हुई जी है,
0: अच्छा
1: तो हम लोग का करा जाए, व्यापारिक विश्राम के तरफ चला जाए या फिर
0: करा कहा जाए, इमा तो डिसीजन आपके हो सकते है। कैसे आप उस जगह पर बैठी भाई, हमारे सखी दुई दू काम ला दे है, आप लोग जाना चाहते है। अब हम उमा डिसीजन नहीं दे सकी थे ना,
1: ठीक है और चलो व्यापारिक विश्राम की तरफ चला जाए
0: की क्या करा जाए,
1: नहीं व्यापारिक विश्राम की तरफ जावा चाहिए के बाद गीत संगीत के साथ।
0: अच्छा तो आप चलो तब तक हम ये बैठे है, व्यापारिक विश्राम खत्म हो जाए तो कार्यक्रम हम लोग फिर आ जाओ जी।
1: लो ठीक है, आप गठरी संभाले बैठे रहो और कहा आप पता करो कि भद्रा कै बजे से
0: हाँ
1: और अच्छा बंधन कै बजे से बांधा जाइए, आप पता करो तब तक हम चली थे ना।
0: ठीक है सखी, तो अब हम लोग बातचीत करा
1: जी, आप आए थे
0: ना साइट के बारे में, तब तक चला जाए
1: ठीक है।

0: நான்காவதை தேஸ் மேரு எவரெஸ்ட் फिरता फिरता 20% सम कैश फिरता चले पानी जहाँ पानी
1: कैश फिरता लिनु भाई था
2: एनसेल पैक किन्नु भाई था जैले पानी जहाँ पानी पैक खरीद गर्न होस अनि 20% सम कैश फिरता एनसेल ऐप मा क्लेम गर्न होस एनसेल पैक किन्नु भाई था सर्थहरु लागू हुने छन् एनसेल नेपाल कै लागि
1: ओहो हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त
3: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली
1: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त
3: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर उर्मिला पराजुले रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठीक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बाथ रोग ढाड दुख्ने मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ
1: अनकल सेवाहरू
3: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ प्याथोलोजी भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे इसिजी कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत दिसा पिसाब खकार थाइराइड बायोप्सी कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ
1: डाक्टर भेट्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7:30 बजेदेखि 8:50 सम्म साँझ 5:15 बजेदेखि 7 बजेसम्म शनिबार र आइतबार बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म साँझ 3:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म
3: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719 98-480-22-229 र 98-605-22-229
4: सुविशु अपर्च्युनिटी 1900 वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुविशु अपर्च्युनिटी यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र रु 1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना रु 221 साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क शर्त र नियमहरू लागू हुनेछ थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np
5: आपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है
6: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है
5: विशेष सुविधा
6: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए
7: देर न कीन जाए आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी फोन नंबर 081-530-598

0: सखी
1: हाँ सखी
0: तो कहे तो हमका जिम्मा दिए रहे हो कि आप पता करो तब तक
1: हाँ, तो पता तो करे
0: बहुत ढूंढे
1: हाँ,
0: नहीं लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि पार्सल माल भद्रा के मारे मार परेशान हुई गो अगर हम लोग कोई कहते आप बंद पे कोई कहते आप बंद पे कोई कहते आप बंद पे इसे का हो जाता है सारा जो हमारे लोग तैयारी रहा था जो खुशी रहा था वो बड़े परेशानी में पड़ जाता है असमंजस में पड़ जावा जाता है। लेकिन आपसे सुने अनुसार भद्रा उद्रा नहीं है नहीं और हम लोग के जैसे भादो 12 गते और 28 अगस्त का एक मनावे के एक हम लोगों का खुशहाली मतलब अभी तक तो कुछ नहीं सुनाई पड़ा है ना मतलब ज्ञान भवा है कि भद्रा लागी या ना लागी दिन जोन तो का है कैलेंडर अनुसार तिथि अनुसार एक दिन ओके खुशहाली मनावे के लिखा है। अब बाकी तो बाद में देखा जाए
1: हाँ, वो तो जैसे भद्रा लागी
0: के चर्चा होने लगा
1: था हाँ, सके जैसे भद्रा लागी कि न लगी ये तो खैर ज्योतिषी अनुसार में पता चलबे हाँ, करिए
0: पता चला है मतलब नहीं लाग है लेकिन का होता समुदाय में
1: हाँ,
0: कई जना कई हाँ, मेरे के बातें जब शुरू हो जाते हैं तो उनके खोज नीति शुरू हो लागत है
1: हाँ,
0: अभी एक हफ्ता बाकी है
1: अभी बाकी है
0: फिर भी पंचांग अनुसार भद्रा नहीं लाग है और 28 अगस्त का और हम लोगों के नेपाल के कैलेंडर में 12 गते का भादो 12 गते का रक्षाबंधन सही सलामत अभी पड़ा है
1: हाँ, हाँ, तो खैर
0: जानकारी अब हम लोग दिया जाते हैं अभी ये जानकारी अनुसार संपूर्ण श्रोता लोगन का भी आप भी शुभकामना दे दीजिए
1: हाँ, और तो साथ ही आप लोगन का रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामना हम दोनों सखी के तरफ से।
0: लेकिन सखी एक बात है
1: आप बात
0: खाली सखी का खाली शुभकामना दिया गया है
1: नहीं हम आपके भी तो हम
0: नहीं हमरे सखी हो हाँ। लेकिन खाली संपूर्ण सखी लोगन का
1: नहीं।
0: अरे भाई लोगन
1: श्रोता साथी भाई हाँ। साथी भाई सब लोगन के
0: यहाँ भूल जावा करो कि खाली सखी का पकड़ खाली सखी का याद रखती
1: सब लोगन का
0: तो
1: साथी भाई
0: सही बात है और सखी आप सहित संपूर्ण सखी सहित और संपूर्ण श्रोता आप लोगन का रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामना है और भाई बहन के प्यार ऐसे जगाए रखा जाए और सही सलामत हमेशा बहन के साथ दिया जाए और बहन लोग हमेशा भाई के रिश्ता हमेशा सही सलामत उनके उम्र के उनके परिवार के सलामती के साथ है ना आप लोग ऐसे हमेशा ये बंधन में बंधे रहा जाए यही शुभकामना है और आवे वाला रक्षाबंधन आप लोग खुशहाली से मनावा जाए बढ़िया से राखी बढ़िया बढ़िया छाटा जाए जैसे हम आज व्यस्त रहना आज उनसे तो हमरे सखी हमका बीच में रोक दीन लेकिन अब का करा जाए वैसे आप लोग भी खुशी हुई हो हमका पता है कि आप लोग राखी ढूंढत हुई हो बाजार में देखत हुई हो और गांव शहर में तो हर जगह मिलते हैं तो ऐसे तैयारी में लगा रहा जाए अगले हफ्ता फिर हम लोग नए विषय वस्तु के साथ मिला जाए तब तक तो हम लोग चला जाए रक्षा बंधन मनावे तो यही कहते हैं आप लोगों के विदाई के समय भी आई गवा है तो आप हम लोग विदा लिया जाते हम दोनों सखी माँ हम सखी संध्या
1: और हम सखी चंदा
0: और आज के कार्यक्रम में आप लोगों का कस लाग जरूर आप लोगों के प्रतिक्रिया हम लोगों का दिन जाए यही कहते हैं आप लोगों से हम लोग विदाई लिया जिन था नमस्कार
1: राम राम, राम, राम
0: शुभ दिन हैप्पी रक्षाबंधन।

0: मेगाहर्स कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: र उज्यालो online.com

0: अंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट
1: बीर डेन्टल बीर डेन्टल बीर डेन्टल
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
5: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
5: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 98-44-88-35-75 और 98-08-25-40-37।
2: नींद ना हमको हाय जग सोना
4: है। बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहा, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
6: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेग्रा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98-480-2697, 98-580-2397 और 98-014-83-697।
7: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: भैया बहुत दिन से महीनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पिराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
6: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होता है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
4: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
6: सुनो, वहाँ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यूँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
8: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुल निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए,
6: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वडा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377।
9: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्द और महिलाएं दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
10: Back to back.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील

0: நான்காவதை தேஸ் மேரோ எவரெஸ்ட் ஃபிர்தா ஃபிர்தா டிஸ்பர்ஷன் சமக்கியா ஃபிர்தா சைலே பனி சஹா பனி
1: கேஷ் ஃபிர்தா லினு பாய்தா
2: एनसेल प्याक किन्नु भयो त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भयो त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
1: एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द

जाऊंगी संगई ले जाऊंगी के घर यू जाली माया ले कास्तो यू मन दुधारे पर्यूनी मिर मिरे उनको आखा ले सुन को चुरा

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज
3: ओला लेडी जान।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी